0: গানে বাজুক মনের রেডিও, শুনছ 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা, নমস্কার কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা, নমস্কার কলকাতা।
2: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
1: सुनछेन নমস্কার কলকাতা, নমস্কার কলকাতা 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা, নমস্কার কলকাতা।
2: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
3: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
2: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
4: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা।
0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
4: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
5: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: শুনছেন নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা
1: 107 FM রেইনবোতে, নমস্কার কলকাতা,
2: নমস্কার কলকাতা।
3: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
4: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
5: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
6: गान मिलांती গানপ্রীতি কার রিকোয়েস্ট, কার রিকোয়েস্ট, এই মুহূর্তে কিন্তু সৌভিকের রিকোয়েস্ট, ঢাক বাজা কাঁসর বাজা শ্রেয়ার কণ্ঠে এই গান শুধুমাত্র আপনার কানে 107A।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता
3: 107 FM रेनबो ते, नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता।
0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता
3: 107 FM रेनबो ते, नमस्कार कोलकाता,
4: नमस्कार कोलकाता।
5: আপনাদের পাঠান প্রচুর প্রচুর প্রচুর মেসেজের মধ্যে কিন্তু গানে গানে এই গানটা শোনার রিকোয়েস্ট কিন্তু রয়েছে, কিন্তু সেই গানের রিকোয়েস্ট বলার আগে কে পাঠিয়েছে সেটা তো বলতে হবে। ওকে, চিন্নু অ্যান্ড মুন্নু, ওকে, ওরা দুই বোন চিন্নু আর মুন্নু, তারা কিন্তু শুনতে চাইছে কোন গান গানে গানে। ও হো হো, ফটাফটি জাস্ট ফটাফটি এই গানটা শুনি দিই, আর তারপর কিন্তু আপনাদের পাঠানোর মেসেজ নিয়ে ফিরবে আর পি আপনাদেরই কানে 107 এ। এই মুহূর্তে গান মিলন দিতে চুন্ন মুন্নুর রিকোয়েস্ট।
6: গান মিলান্তি, গান মিলান্তি।

0: PIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
2: नमस्कार कोलकाता
1: 107 FM रेनबो ते। नमस्कार कोलकाता,
2: नमस्कार कोलकाता।
0: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें और

0: BIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
2: नमस्कार कोलकाता
1: 107 FM रेनबो ते। नमस्कार कोलकाता,
2: नमस्कार कोलकाता।

0: प्रोडक्ट्स पर BIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।
1: सुनछेन नमस्कार कोलकाता,
2: नमस्कार कोलकाता
1: 107 FM रेनबो ते। नमस्कार कोलकाता,
2: नमस्कार कोलकाता।
0: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। मेरा जूता है जापानी, ये पर जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर।

107.8 FM रेनबो दिल से दिल तक पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जिसका नाम है नॉनस्टॉप गपशप। मैं शुजीश मिता आप सबके साथ 10:08 स्टूडियो की घड़ी में वक्त। दुर्गा पूजा का चौथा दिन और जो है लास्ट मिनट शॉपिंग की जो है अब बारी है। हाँ हाँ, हम इस दुर्गा पूजा की तैयारी पूरे साल करते हैं मुझे पता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। बस लगता है कि ये छूट गया, बस ये लेना बाकी है, और इसी थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना होता है, कभी मार्केट, कभी मॉल, या फिर कभी ऑनलाइन ऐप ही से ही। लेकिन कहीं ना कहीं से लास्ट मिनट शॉपिंग जो है चलती रहती है ना। और आज नॉनस्टॉप गपशप के इस चतुर्थी के दिन यानी कि दुर्गा पूजा के चार दिन जो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं है, उससे पहले की लास्ट मिनट शॉपिंग की बारी है और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। बात तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन साथ में जो है गाने भी सुनते रहेंगे, क्योंकि किस्से कहानियाँ गीतों के बिना थोड़े अधूरे बिल्कुल लगते हैं। तो पहले गीत आप सबके लिए कार्यक्रम का सुनते रहिए, साथ रहिए 107.8 FM रेनबो दिल से दिल तक।

आज का 17 मिनट स्टूडियो की घड़ी में वक्त है। और दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि घर से बस निकले हैं कि एक सामान लेके बस आ जाएंगे और फिर लेकिन जब वापस लौटने का समय आया तो हाथ में 5-6-7-10 पैकेट्स थे और बैग्स थे और जिसे चीज को खरीदे गए थे शायद वही नहीं लिया, बाकी सब आ गया। ऐसा हुआ है कभी? और कभी ऐसा हुआ है कि किसी खास मौके के लिए शॉपिंग करनी हो और लगा कि बस ठीक है आज ऑफिस में थोड़ा लेट हो गया, आज बारिश हो रही है, आज तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है,

नहीं तो फिर कैसे ही काम बन पाएगा? ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो ये दुर्गा पूजा से पहले हर बार होता है और मुझे बस लास्ट मिनट पे ही याद आता है कि अरे मैंने अपनी मैचिंग ज्वेलरी तो अभी तक ली ही नहीं, या फिर इस साड़ी के साथ दूसरा कुछ पहनने के लिए तो मुझे और चाहिए, या फिर किसी और चीज़ को लेना है, जैसे कुछ मेकअप का हो गया, या फिर किसी को कुछ देना है गिफ्ट में, वो ख़रीदना रह गया। ऐसा हुआ है ना? होता है ना? मेरे साथ तो ये बिल्कुल होता है। उस वक्त बस लगता है कि अभी ही सारा सामान चाहिए, जैसे पूरी दुनिया की दुकान आज ही बंद हो जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा कभी मुझे ये सामान तो बस मिलेगा ही नहीं। और लेना भी तो कितना कुछ होता है, कपड़े होते हैं, मैचिंग चीज़ें होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, मेकअप का सामान होता है, सजने संवरने के लिए और भी कितना कुछ चाहिए होता है, साथ में अगर किसी को साथ घुमा रहे हैं तो उनके लिए भी तो शॉपिंग करनी ज़रूरी होती है ना। और सबसे मज़ेदार बात, दुकान पर पहुंचकर बस दुकानदार से कहते हैं भैया कुछ अच्छा सा दिखाइए, और फिर बजट को लेकर किचकिच। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि बस हम किसी मार्केट पहुंचे और बार्गेनिंग करते करते बहुत ज़्यादा वक्त निकल जाता है ना।

बिल्कुल सही बात दोस्तों, लास्ट मोमेंट शॉपिंग की बातें हो रही हैं दुर्गा पूजा से पहले, और हमारी तो उम्मीद ही है कि बस मेरी चूड़ी, मेरी कंगना, मेरी बिंदिया जो है सबको भाए और जो है सब हमारी ढेर सारी तारीफ कर जाए। ऐसे लास्ट मोमेंट शॉपिंग के लिए कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं जिसका आप लिस्ट बना सकते हैं। जैसे लास्ट मिनट पे आप अगर कम वक्त में जा रहे हैं और जल्दी जल्दी कुछ फटाफट सामान लेना चाहते हैं, तो अपनी लिस्ट ज़रूर पहले से तैयार कर लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए, किसके लिए चाहिए और इसका बजट कितना होना चाहिए। अगर आप ये तीनों चीज़ें एक जगह अपने दिमाग में रख लेते हैं या फिर कहीं लिख लेते हैं तो फिर आपके लिए आसान रहता है, कहीं कुछ भूल तो नहीं रहे ये चेक कर लेना। दूसरी जो बात है वो ये कि अगर कहीं मार्केट में अभी चूंकि बहुत जगह पे बहुत तरह के आपको छूट मिल जाएंगे, लोग बोलेंगे ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ऑफ़र मिल जाएंगे, तो ऑफ़र तो बिल्कुल अच्छा लगता है, सबको पसंद आता है, लेकिन ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या उस चीज़ की हमें ज़रूरत भी है या बस वैसे ही हम जो है सामान देखकर कुछ पसंद आ गया ले लिया, ऐसा करके अपने पैसे भी खर्च कर लिए और उस चीज़ की ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं, तो ऐसा करने से बिल्कुल बचे। और तीसरी चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो कि मैचिंग के चक्कर में अगर हम बहुत दिन बहुत वक्त तक इधर उधर घूमते रहेंगे तो बस समय ही जो है हमारा खर्च हो जाएगा, तो हमें अपने लुक को ऑलमोस्ट दिमाग में रखना है कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए, इस कपड़े के साथ ऐसी चूड़ी या बिंदी चाहिए, या फिर इस शर्ट के साथ मुझे ये वाला गॉगल्स चाहिए, या फिर इस तरह की एक घड़ी मैं पहनूंगा। अगर ये सारी चीज़ें आप पहले से दिमाग में रखते हैं तो आप फिक्स तय दुकानों पर पहुंच सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसे कलर का ये कपड़ा या फिर इस कलर की ये चूड़ी या फिर इस कलर का ये वॉच या फिर सनग्लास चाहिए, या फिर जो भी आपको लेना है उसका एक लिस्ट बना ले, जैसे लुक में आप जाना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, उस चीज़ को अपने लुक दिमाग में जहन में रखें और उस हिसाब से जो है अपनी शॉपिंग को ख़त्म करें। नहीं तो देखा जाएगा कि जो चीज़ मार्केट में पसंद आई आप ले आए और सब जब साथ में आप यूज़ करें तो वो लुक उतना खुल नहीं रहा है ना, ऐसा भी होता है कभी कभी।

जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। मेरा जूता है जापानी ये पर। जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।

10:41 स्टूडियो की घड़ी में वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप। मैं सुचिश्विता आप सबके साथ। वक्त है एक घोषणा का। 149वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपराह 1 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल योगायोग भवन P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 149वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों के पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरा का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR Avenue कोलकाता 7000012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए।

शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि दिए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत के उपस्थित हो। किसी भी प्रकार की स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332212050 या फिर 0332212612 या फिर 0332212500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखना होना चाहिए। उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार एवं आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: एक चुटकी नुस्खे। नॉन स्टॉप गपशप में अब वक्त है एक चुटकी नुस्खों का। अगर दोस्तों अगर आप अभी लास्ट मोमेंट शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट में घूम रहे हैं, अपने पसीने निकाल रहे हैं और पैसे भी, तो बस अपनी शॉपिंग बैग के साथ साथ अपनी पॉकेट की भी थोड़ी सी खबर रखें, ये ज़रूरी है। नहीं तो फिर अभी तो आप बस मार्केट में सारे पैसे खर्च कराएंगे, फिर घर आके लगेगा अरे इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। शॉपिंग से पहले याद रखें कि क्या आपको लेना है, कितना आपको लेना है, किसके लिए लेना है और उनकी पसंद का भी ध्यान रखें। दूसरी बात जो आपको मैं आज के दिन बताऊं वो कि शॉपिंग के वक्त जो है अपनी बैग में छोटी सी एक पानी की बोतल ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप थक जा रहे हैं तो पानी पीते रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो गर्मी का मौसम है ऐसा नहीं है कि बस आपको थकाएगा, आपके पसीने निकालेगा, साथ में जो है आपको परेशान भी कर देगा। तो पानी की बोतल अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। सुबह सुबह शॉपिंग में निकलने के चक्कर में खाली पेट ना निकले, घर से खाना खाकर ही निकले। और ये तो थी आज के दिन के लिए एक चुटकी नुस्खे। रुक करते हैं अगली गीत की ओर।

0: बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।
1: और इसी के साथ कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सबके लिए। गीत के साथ छोड़े जाऊंगी आपको, सुनते रहिए, साथ रहिए 107 AIR FM ट्रेन बहुत दिल से दिल तक। मैं शुचिश्मिता आप सबके साथ है। सुनेंगे लम्हा फिल्म से इस गीत, लम्हे फिल्म से इस गीत को मीका सिंह और चिन्मय की आवाज में, साजना।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: হ্যাঁ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: गाने बाजू ऑन ए रेडियो सुनो 107 FM Rainbow, Shat Shure Sharadi, Shat Shure Sharadi.
5: Kalo Joy Bangla Ganer Dhara Chhuye Jak Mon. Shunchen Gandoria 107 FM Rainbow Te. Gandoria, Gandoria Chhuye Jak Mon, Chhuye Jak

0: This helmet fits me.
1: 7 FM radio. শুনছো 107 FM Rainbow সাত সুরে সারা দিন সাত সুরে সারা দিন
0: This helmet fits better. I'll buy this one. But are you sure about its safety features?
2: Don't worry. This helmet is ISI certified.
0: And how will I know if it's authentic?
3: हाँ ये रिंग अच्छी है बीवी को पसंद भी आ जाएगी
4: अरे यस सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें
3: हाँ ये रिंग अच्छी है बीवी को पसंद भी आ जाएगी
4: अरे यस सर आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें
1: गाने बाजू ओनली रेडियो শুনছো 107 FM Rainbow সাত সুরে সারা দিন সাত সুরে সারা দিন
6: কালজয়ী বাংলা গানের ধারা ছুঁয়ে যাক মন শুনছেন গানদরিয়া 107 FM Rainbow তে গানদরিয়া গানদরিয়া ছুঁয়ে যাক মন ছুঁয়ে

PIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें और

0: শুনছো 107 FM Rainbow, সাত সুরে সারা দিন, সাত সুরে সারা দিন।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: कालोजयी बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া, গানদরিয়া, ছুঁয়ে যাক মন, ছুঁয়ে যাক মন।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें और

PIS क्वालिटी मार्क अनिवार्य कर दिया है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें, और अगर

0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
0: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, लेकिन ये सेफ है क्या?
1: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

पर जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी। मेरा जूता है जापानी ये पर जूते की बात चली है तो एक जरूरी बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, अब कोई भी इन्हें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ISI मार्क के बिना मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल नहीं कर सकता। फुटवेयर की खरीदारी करते वक्त BIS का ISI मार्क जरूर देखें। BIS इंस्पायरिंग क्वालिटी।

0: গানে বাজুক মনের রেডিও, শুনছ 107 FM রেইনবো, সাত সুরে সারাদিন, সাত সুরে সারাদিন।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: कोई भी घरेलू सामान खरीदने से पहले सबसे पहले BIS क्वालिटी मार्क यानी ISI मार्क चेक करें,

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সারথি অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: PCPNDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर। 3 का तड़का 107 FM रेनबो पर।
4: जी हाँ दोस्तों, काश फूलों की लाली है और संग की धुन मतवाली है। देखो आ गई माँ दुर्गा, खुशियां से भरी बंगाल की हर डाली है। दोस्तों आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर, रिंकू के साथ 3 का तड़का। तो आइए, वक्त की कमी है, 3:04 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए, आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं उस चीज के लिए हम भी वेट कर रहे हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में सबसे पहले ये तड़का।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ये गाना फिल्म पीके से। लेकिन आइए अब सुनते हैं एक हमारी जरूरी सूचना, जो कि है 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत।

दोस्तों 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्किल की अध्यक्षता में दिनांक 19/11/2026 को अपराह्न 1 बजे मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल युगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट या फिर वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 139वीं डाक अदालत एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों और डाकघरों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन संबंधी दावों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित ब्यूरो का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। साथ ही में शिकायत श्री एस सी दास सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्किल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और ये डाक या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in adpgcowb@gmail.com या फिर pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 26/10/2026 तक ये उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे दिए गए निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट या फिर वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक अदालत एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332122150 0332122150 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक अदालत पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। विशेष बात यह है कि उपयुक्त डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकारी आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: जी हाँ दोस्तों, आप पलक मुच्छल की आवाज में ये सुन रहे थे प्रेम रतन धन पायो से ये गीत, और आप सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों आज परियोजना प्रस्तुति में हम आप बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना के विषय में। आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPPMJ भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इसे 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे भारत में लागू किया गया था। ये दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इस योजना की विस्तृत जानकारी इस प्रकार है। ये योजना पूरी तरह से पेपरलेस यानी कि कागज रहित और कैशलेस यानी कि नगद रहित है। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित तरीके से इस प्रकार है। प्रति परिवार 5 लाख प्रतिवर्ष का स्वास्थ्य कवर बीमा राशि मिलता है। माध्यमिक और तृतीयक स्तर की गंभीर बीमारियों के लिए अस्पताल में भर्ती होने का खर्च और उपचार का प्रकार भी मिलता है। अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले तक की दवाई और जांच का खर्च भी दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के 15 दिनों बाद तक मेडिकल खर्च और दवाइयां भी मिलती हैं। योजना से जुड़े से पहले दिन से ही सभी पुरानी और पूर्व मौजूद बीमारियां कवर होती है। परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु या लिंग पर कोई सीमा गैप नहीं है। लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान मुख्य रूप से सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 CEC 2011 के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। कच्चे मकान में रहने वाले परिवार यानी कि ग्रामीण क्षेत्र रूरल जैसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष का कोई कमाऊ वयस्क सदस्य ना हो, भूमिहीन परिवार जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं, अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के परिवार, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, घरेलू कामगार, रेहड़ी पटरी वाले, मोची फेरी वाले, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, पेंटर, वेंडर, सुरक्षा गार्ड, कूली और अन्य कम आय वाले कामगार। विशेष विस्तार 2024 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति या आय की परिवार किए बिना 5 लाख का अलग कवर दिया जाता है। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है, सरकारी नौकरी है, मासिक आय 10,000 से अधिक है या जो आयकर इनकम टैक्स देते हैं, वे इस योजना के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा OPD का सामान्य खर्च और कॉस्मेटिक सर्जरी इसमें कवर नहीं होता है।

0: स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के आधारिक पोर्टल बेनिफिशियरी पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर और राशन कार्ड आधार कार्ड के जरिए जांचे कि आपका नाम सूची में है या फिर नहीं।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ दोस्तों, 107 FM रेनबो पर रिंकू के साथ आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 3 का तड़का। अभी अभी आपने सुना परियोजना प्रस्तुति, जिसमें हम बात कर रहे थे आयुष्मान भारत योजना के विषय। 3:22 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, और इसके बाद हम 3:30 पर आपको उमंग कार्यक्रम यानी कि सीधे दिल्ली से आपका साथ जोड़ेंगे। लेकिन तब तक सुनते हैं अमित त्रिवेदी की आवाज में ये गीत।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। अजीत का नमस्कार और जोहार। श्रोताओं, सुविचार या अच्छे विचार हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का कारण होते हैं और जीवन में सही राह पर चलने में हमारी सहायता करते हैं। तो आइए सुनते हैं आज का सुविचार। भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी। लिखते हैं, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, अपने संस्कार कभी मत बदलिए, क्योंकि पहचान नाम से नहीं इंसान के व्यवहार से बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत विचार के लिए। आपको हमारा आभार। आइए अब जानते हैं किन किन श्रोताओं ने हमें भेजा है संदेश और क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई। मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ और आपका कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है। अगला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू और रविंद्र रौनक सेन। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता भाई अजीत जी और बहन विमलेश जी को सादर अभिवादन, नमस्कार। आपके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ रहते हैं, अतः हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम हैं सेन परिवार छत्तीसगढ़ से। सेन परिवार का उमंग कार्यक्रम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आभार कि आप हमारे कार्यक्रम को सपरिवार सुनते हैं। अगला संदेश हमें मिला है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी। लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी, उमंग कार्यक्रम सुन रहे हैं। शिक्षाविद अबला बोस जी पर कार्यक्रम सुना एवं बहुत ही पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए सर अजीत जी एवं मैडम विमलेश जी, हम आपका दिल की गहराइयों के साथ हृदय से आभार प्रकट करते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी की पूरी तकनीकी टीम को। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो श्रोताओं, चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की दुनिया में। खासकर उन आविष्कारों की चर्चा इस सप्ताह हम कर रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम सोचते भी नहीं कि उनका भी आविष्कार हुआ होगा। तो श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पेंसिल के बारे में। एक पतली सी लकड़ी और बीच में काला सिक्का, इससे हम जो चाहें लिख ले या स्केच बना ले। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसकी खोज कैसे हुई होगी? तो श्रोताओं, ये है छोटी पेंसिल की कहानी और इसकी कहानी है बड़ी तूफानी। चौंकिए मत, मैंने कहा इसकी कहानी तूफानी है, क्योंकि पेंसिल का जन्म ही एक भयंकर आंधी तूफान के कारण हुआ था। तो जरा पूछिए ना, वो कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। बात है 1564 की। इंग्लैंड के बोरोडेल नाम के एक इलाके में जोरदार आंधी आई। एक विशाल पेड़ जड़ से उखड़ गया। जब बाद में स्थानीय चरवाहे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उखड़े हुए पेड़ की जड़ों के नीचे एक अजीब काले रंग का चमकदार पत्थर दबा हुआ था। जब उन्होंने उसे छुआ तो उनके हाथ थोड़े काले हो गए। उन्होंने पाया कि उस पत्थर से किसी भी चीज पर आसानी से लगभग काला गाढ़ा निशान बन जाता है। तो श्रोताओं, आपको पता है सबसे पहले उसका क्या इस्तेमाल हुआ? उसका इस्तेमाल हुआ भेड़ों की पीठ पर निशान लगाकर अपनी अपनी भेड़ों को पहचानने का। वे चरवाहे उसका उपयोग अपनी भेड़ों की पहचान करने के लिए करने लगे। लेकिन उस समय एक मजेदार गलतफहमी भी हुई। वैज्ञानिकों को लगा कि ये काला पदार्थ सीसे यानी लेड का कोई नया रूप है। उन्होंने इसे नाम दे दिया ब्लैक लेड। इसी दुविधा में हम आज भी इसे कभी कभी लेड पेंसिल भी कह देते हैं। जबकि सच्चाई ये है श्रोताओं, ये वैज्ञानिक सच्चाई है कि इसमें सीसा रत्ती भर भी नहीं होता। तो वास्तव में वो था क्या, आइए जानते हैं। साथियों, वो था ग्रेफाइट यानी शुद्ध कार्बन का एक रूप। अब समस्या ये थी कि ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता था, हाथ में पकड़ो तो हाथ काले और जरा सा जोर पड़ते ही टूट जाए। तो पहले लोगों ने इस पर थोड़ी मिट्टी मिलाई जिससे ये थोड़ा ठोस हो गया। फिर उन्होंने इससे लिखना शुरू किया। तो इस तरह शुरू हुई ग्रेफाइट से पेंसिल की पहली लिखाई। धीरे धीरे इस पर नवाचार होते रहे, प्रयोग होते रहे। फिर इटली के एक दंपत्ति ने सोचा कि इसे लकड़ी के खोल में बंद कर दिया जाए। उन्होंने लकड़ी का एक ठोस टुकड़ा लिया, बीच में पतली नाली बनाई और उसने ग्रेफाइट को रख कर लिखने लगे, यानी आज की पेंसिल का ढांचा यहीं से आया। लेकिन अब भी लिखने में समस्या थी। तब मैदान में आए एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक निकोलस जैक्स कोंटे। उन्होंने ग्रेफाइट के चूरे को चिकनी मिट्टी, एक विशेष रसायन और पानी के साथ मिलाकर गूंथ लिया, उसकी पतली छड़े बनाई और उसे भट्टी में पका दिया। अब ये ठोस हो गई, जिससे लिखने में आसानी होने लगी। जी हाँ, और सबसे रोचक बात ये हुई कि मिट्टी की मात्रा घटा बढ़ाकर उन्होंने पेंसिल को हल्का या गाढ़ा लिखने वाला बना दिया और उन्हें HB, 2B और 4B के नाम से वर्गीकृत कर दिया। HB आप अक्सर देखते होंगे पेंसिल्स में लिखा होता है HB, तो आज आपको बता दूं HB का अर्थ क्या होता है। HB यानी हार्ड ब्लैक, इसकी लिखावट मध्यम होती है। कुछ पेंसिलों में आप लिखा हुआ देखेंगे 2B, तो इसका अर्थ है ज्यादा गहरी।

भाई, इसे ड्राइंग के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और आपने एक पेंसिल और देखी होगी, अगर आपको पेंसिल्स का शौक है तो आपने जरूर देखा होगा, लिखा होता है 4B। 4B का अर्थ होता है बहुत गहरी छाप वाली पेंसिल। तो साथियों, है ना मजेदार जानकारी। बस अब पेंसिल तो बन ही गई, समस्या थी कि लिखे हुए को मिटाना पड़े तो क्या किया जाए। पता है, पहले लोग पेंसिल की लिखावट मिटाने के लिए बासी ब्रेड के टुकड़ों का इस्तेमाल करते थे। फिर 1858 में एक अमेरिकी आविष्कारक हाइमन लिपमैन ने पेंसिल के पिछले सिरे पर रबर जड़ दिया और पेटेंट करा लिया। बस बन गई पूरी पेंसिल। तो साथियों, यहाँ तक की जानकारी तो मिल गई। अब कुछ बहुत रोचक है आपके लिए। क्या आपके मन में ये प्रश्न आता है कि पेंसिल नाम भला कैसे पड़ा? तो आपको बता दें, पेंसिल शब्द की जड़ लैटिन भाषा में है। उन दिनों में चित्र बनाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले छोटे ब्रश को पेंसिलस कहते थे। बाद में जब ग्रेफाइट से लिखने वाले उपकरण का इस्तेमाल शुरू हुआ तो उसके लिए भी पेंसिल शब्द प्रचलित हो गया। तो श्रोताओं, ये थी तूफान, चरवाहों और वैज्ञानिकों के नवाचार की रोचक कहानी। अब तो भाई, इस पेंसिल से लिखने में और भी अधिक मजा आएगा, है ना जी। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी पेंसिल के बारे में। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पेंसिल नाम किस भाषा से आया है? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत तू है हमको प्यारा, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं, भारत पाकिस्तान के युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वाले सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित इस कार्यक्रम में रोमांचक विवरण है कि किस प्रकार उन्होंने शत्रु पक्ष के कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया और वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हें इस साहसिक कार्य के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का यह सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे।

0: अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली।
1: मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा।
2: साहब आप क्यों परेशान होते हो, हम कर लेंगे सफाई टैंक की।
1: अरे नहीं नहीं नाथू सिंह, अगर मैं टैंक चलाता हूँ तो उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी मेरी ही है।
2: वो तो ठीक है साहब,
1: और अगर मैं इसकी देखरेख नहीं कर सकता तो इस पर बैठने का भी कोई हक मुझे नहीं है।
2: वो तो ठीक है साहब, लेकिन
1: देखो नाथू सिंह, हम सब सैनिक हैं और हमारी पूना हॉर्स रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार एक सच्चा सैनिक वही है जो किसी भी काम को छोटा ना समझता हो और हर काम को पूरी निष्ठा, ईमानदारी और लगन से करता हो।
2: बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन
1: अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे टैंक साफ करने दो।
0: अरुण सबके साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते, चाहे वो अफसर हो या जवान। देर देर तक बैठकर दोस्तों के साथ गपशप करना उन्हें बेहद पसंद था, पर इसके साथ साथ वो कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझने को भी तैयार रहते। हारना और डर कर पीछे मुड़ना उन्होंने कभी नहीं सीखा, और इसी का परिचय दिया उन्होंने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय।
3: माँ।
4: अरुण बेटा, तुम पहली बार युद्ध में जा रहे हो, कैसा लग रहा है?
3: मुझे काफी गर्व महसूस हो रहा है माँ। फौज में भर्ती होने के 6 महीने के अंदर ही मुझे अपने देश की सेवा का मौका मिल गया।
4: हाँ।
3: अब मौका मिलेगा मुझे कुछ

0: प्यार दिखाने का।
1: बेटा, एक बात याद रखना, तुम्हारे पूरे परिवार का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा है।
0: जी।
1: ये चमचमाते हुए मेडल ये बताते हैं कि भारतीय सेना में तुम्हारे परिवार का कितना योगदान रहा है।
0: जानता हूं मां।
1: जाओ बेटा, इस मर्यादा को बनाए रखना और ऐसे लड़ना कि दुश्मन के गलियारों में भी तुम्हारी बहादुरी की चर्चा हो।
0: जी मां, आशीर्वाद दीजिए।
1: जाओ बेटा।
2: और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन 16 दिसंबर 1971, स्थान बसंतर नदी का किनारा। दोनों सेनाओं में जम्मू कश्मीर के सामने वाले मैदानी इलाके शकरगढ़ में घमासान युद्ध चल रहा था।

0: जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो, अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर, सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है। साहब,
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह, टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह, निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर!
4: सर,
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर!
4: सर, सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ, लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीरगति पाई।

हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, खेत्रपाल परिवार के लिए कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक विचित्र घटना घटी, जिसके विषय में हमने उनके पिता ब्रिगेडियर मदनलाल खेत्रपाल से चर्चा की और उन्होंने जो कुछ भी बताया हम उसे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।
1: कुछ सालों बाद मुझे संदेशा मिला कि पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर मुझसे मिलना चाहता है। क्योंकि मैं उनके नाम से परिचित नहीं था, इसलिए मिलने की कोशिश भी नहीं की। अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं, जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है, और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा, जी बहुत अच्छी तरह से। जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है,

0: मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था, तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया, जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम, सलाम सलाम।
1: सीमा प्रहरी
2: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अर्शद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हमारे दिल्ली से कार्यक्रम उमंग। अब रिंकू को इजाजत दीजिए, 107 FM रिम्बप पे आप सुन रहे थे 3 कतर का कार्यक्रम।

0: ইনভেস্টর সচেতনতামূলক উদ্যোগ। আরো জানতে হলে সেবির ইনভেস্টর ওয়েবসাইট দেখুন, নয়তো সেবি সার্থী অ্যাপ ডাউনলোড করুন।
1: पीसीपी एनडीटी कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गाने बाजू ओने रेडियो सुनछो 107 एफएम रेनबो सात सुरे सारा दिन सात सुरे सारा दिन।
4: শুনছো ক্যাফে কলকাতা,
5: ক্যাফে কলকাতা
4: 107 এফএম রেইনবোতে, ক্যাফে কলকাতা,
5: ক্যাফে কলকাতা।
6: Natural night, but a natural night. Do you feel alright? Want a natural night?

0: यादों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: हम साथ साथ।
2: जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिंकू और आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो पर छायालोक का कार्यक्रम। दोस्तों, छायालोक ऐसा ही कार्यक्रम है जिसका आप इंतजार करते हैं और ये आपका पसंदीदा शो भी है। दोस्तों, इस छायालोक में हम आज लाए हैं हम साथ साथ हैं, यानी कि हमारे दोस्तों, हमारे गीतों के, हमारे कलाकारों के उन सभी बातों को हम साथ लिए आए हैं जिसे आप भूल बैठे हैं। 90s और 2000s के गीतों को हम यहाँ पर फिरो के लाए। आइए सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत, मेरी साथ।

0: जी दोस्तों, आप सुन रहे थे एसबी बाला सुब्रमण्यम और दिनेश दास गुप्ता की इस गीत में अपना अंदाज अपना अपना से, इसके गीत के मजरू सुल्तानपुरी और तुषार भाटिया की संगीत के द्वारा। लेकिन अब सुनते हैं एक जरूरी पूर्वानुमान मौसम विभाग से आई सूचना। दोस्तों, दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मौसम का पूर्वानुमान वर्ष 2026 इस प्रकार है। दक्षिण बंगाल में दक्षिण 24 परगना यानी कि 14 तारीख को दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मिदनापुर के कुछ स्थानों पर और उत्तरी परगना कोलकाता हावड़ा के पश्चिमी मिदनापुर और पूर्वी बंगाल के एक या अधिक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और साथ ही में दक्षिण बंगाल के शेष जिलों की मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहेगा। दक्षिण 24 परगना कोलकाता हावड़ा पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत संभावना है और दक्षिण बंगाल के शेष जिलों में एक दो से अधिक स्थानों पर हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की बहुत बड़ी संभावना है। अब आइए सुनते हैं कोलकाता शहर का मौसम का हाल। 14/10/2026 आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, यानी कि 14 तारीख के दिन आज के दिन हल्की बारिश होने की प्रबल संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इसके साथ ही 15 तारीख को भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्के से मध्यम बारिश गरज के साथ बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है और अधिकतम न्यूनतम तापमान इस प्रकार रहा कि अधिकतम तापमान क्रमशः 31 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। उत्तर बंगाल में 14 और 15 तारीख का मौसम का हाल इस प्रकार है। उत्तरी बंगाल के जिलों में मुख्य रूप से शुष्क मौसम रहने की संभावना है।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे साधना सरगम, उदित नारायण और जतिन और ललित की आवाज में फिल्म जो जीता वही सिकंदर से ये गीत। वैसे दोस्तों, गानियों की गीतों की लड़ियां एफएम में 107 रेनबो एफएम में मेरे साथ आप सुनते ही रहेंगे। आइए सुनते हैं सुरेश वाडकर की आवाज में फिल्म चांदनी से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, सुरेश वाडर की आवाज में आप चांदनी फिल्म से गीत सुन रहे थे और ऐसे ही मजेदार गानों के साथ सजी है हमारी सुरों की महफिल। हम साथ साथ हैं और हम सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर रिंकू के साथ ये गाना। चलिए सुनते हैं एसवी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में ये गीत, फिल्म मैंने प्यार किया से।

जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही पागल प्रेमियों के भरा हुआ है हमारा ये गीतों का सफर में इन सभी गीतकारों के साथ, हमारे हीरो हीरोइन भी और नायक नायिका के साथ। हम एक और दीवाने को लेकर आ रहे हैं एसबी बाला सुब्रमण्यम और साधना सरगम की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, 107 FM ब्रेनबो पे आप सुन रहे थे SB बाला सुब्रमण्यम और साधना सरगम की आवाज में फिल्म प्रेम कैदी से ये गीत। और अभी फिर से आपके लिए प्रस्तुत है SB बाला सुब्रमण्यम की आवाज में फिल्म हमारे जो है जो इसके लिए है पत्थर के फूल से ये गीत।

जी हाँ दोस्तों, एस बी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के फूल से ये गीत। और हमारे गीतों के सफर में अब चलते हैं 1999 की तरफ। अलका याग्निक, कुमार सानू के बैक टू बैक दो गीत सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे बैक टू बैक कुमार सानू की ये गीते, और गीतों में हम भूल गए थे कि समय कहाँ है। 7:54 हो चुके हैं और हमारे स्टूडियो की घड़ी में भी 7:55:29 बज चुके हैं। दोस्तों, कुमार सानू के साथ साथ हमारे गीतों का सफर का सिलसिला भी चलता ही रहेगा, क्योंकि एक सेगमेंट में मैं आरजे रिंकू आपके साथ थी, लेकिन दूसरे ही सेगमेंट में हमारे साथ होंगे रोशन मुरारका जी। तो 8 से लेकर 9 तक उनके साथ रहिएगा। अभी मैं छोड़ जाती हूँ आपको अलीशा चिनाय और उदित नारायण की आवाज में ये गीत के साथ। आप फूल और कांटे की गीत सुनिए और रिंकू को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 FM रेनबो पर एक बार फिर हाजिर है आपका रेडियो वाला दोस्त रेकल कार्यक्रम छायालोक। अभी से लेकर 9 बजे तक रहूंगा मैं आपके साथ, लेकिन सबसे पहले शेरों वाली के नाम ये गीत।

दोस्तों, माँ दुर्गा शक्ति, भक्ति, ममता और साहस का स्वरूप है। नवरात्रि के पावन अवसर पर यह विशेष कार्यक्रम का यह गीत माँ के चरणों में था। आपको जैसा पता है कि 9 बजे तक आपका ये रेडियो वाला दोस्त आपके साथ रहेगा, आपके गीतों की फरमाइश लेगा, आपकी से बातें करेगा। और फिलहाल चंदा मामा का ये गीत आप सुनिए और आपके फोन कॉल्स का इंतजार है आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मलारका को। नंबर एक बार बता दूं आपको, 2213 1341।

0: चलिए दोस्तों, कोई कॉलर फ्रेंड आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो,
1: गुड इवनिंग डॉक्टर जी।
0: गुड इवनिंग,
1: मैं मुनीरुद्दीन बात कर रहा हूँ, दक्षिण सेंट्रल हावड़ा से।
0: बताइए।
1: सबसे पहले आपको और सभी श्रोताओं को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ।
0: आपको भी।
1: और आपका जो प्रोग्राम है काबिले तारीफ है, क्योंकि आप स्टार्ट भी किया, बहुत खूबसूरत है। और आप हमारे मुझे मौका दिया, इसे आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
0: किस चीज का मौका दिया?
1: हमारे गाने का फरमाइश के लिए।
0: भाई आपकी लाइन मिली तो आपका गाना तो हम बजाएंगे ना।
1: अरे लाइन मिले, लेकिन आप तो लाइन लिया, कभी कोई कोई नहीं लेते रहता हूँ, प्रोग्राम करके चला जाता है।
0: ये बात है। अच्छा, आप ये गौर कीजिए कि जिस दिन मतलब आपकी लाइन मिलती है और आप बात कर पाते हैं, उन्हें सबसे पहले सुबह आपने किसका चेहरा देखा था?
1: पहले
0: अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं है।
1: उसी का दोष नहीं देता हूँ, लेकिन आप हमारे लिए खास है, यही बोलना चाहता हूँ।
0: अरे भाई साहब,
1: आपको हमारे मौका देता है इसलिए आप खास है हमारे,
0: मतलब आपका फायदा होता है इसलिए हम खास है
1: ना? फायदा नहीं, हमारे
0: मतलब आप आ पाते हैं, आप एयर में आ पाते हैं इसलिए हम खास है ना?
1: नहीं नहीं, हमारे मन का बात आप सुनता है, और मैं आपका जो प्रोग्राम हमारा दिल से लेता है, इसी तो है कि दिल से दिल तक होगा।
0: बताइए क्या सुनना चाहेंगे?
1: ओ, आपका फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए, ये गाना, क्योंकि पूजा का माहौल है, शॉपिंग हो रहा है कलकत्ता में।
0: आपने कर ली शॉपिंग?
1: और हाँ तो सरावटरी शॉपिंग होता है।
0: अच्छा, ओके।
1: और पूजा का खास पंडल है, जैसा कि कॉलेज स्क्वायर में है।

0: शहर में है बहुत सारे अच्छा अच्छा पंडाल है, हमारे कोशिश रहेगा उसी पंडाल में जाने का।
1: चलिए ठीक है, आप पंडाल जाइएगा जरूर, और फिलहाल आपकी पसंद का ये गीत।
0: थैंक यू।

0: दक्षिण 24 परगना के लिए मौसम की चेतावनी। दक्षिण 24 परगना जिले के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की बहुत संभावना है। चेतावनी समाप्त हुई।
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक।

0: चलिए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, आइए उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हेलो।
1: हाँ, हम लेखराम कालीन जी से सपना घोष बोल रहे हैं।
0: सपना जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है।
1: हाँ,
0: तबीयत तुम्हें ठीक है तो?
1: हाँ अभी तबीयत ठीक है।
0: आप रेडियो सेट को मोबाइल से थोड़ा दूर करिए, आपकी आवाज इको हो रही है।
1: हाँ
0: बताइए।
1: तो
0: गाना तो हम सुनाएंगे, लेकिन बताइए पूजा का माहौल है कुछ, इसके बारे में कुछ बोलिए।
1: हाँ, बारिश कैसे निकलेंगे वही तो सोच रहे हैं।
0: क्या सोच रहे हैं?
1: बारिश होने वाला है।
0: बारिश होने वाली है, ठीक है। तो छाता लेकर पूजा में घूमना है, उसमें क्या है?
1: छाता लेके तो जाएंगे।
0: हाँ। हाँ। ऐसे भी तो हम लोग छाता और पानी रखते हैं साथ में।
1: हाँ, हाँ।
0: चलिए ठीक है, बोले सुनवाते हैं आपको।
1: ठीक है
0: ठीक है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं पायल की पसंद का गीत, और अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत, अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं, तो फटाफट डायल कीजिए 2213-1341। नंबर एक बार फिर से बता दूं, 2213-1341, जहां आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका अभी से लेकर और 19 मिनट यानी 9 बजे तक आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहा है।

दोस्तों फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, आवाज़ इको होने के कारण फोन लाइन में बात नहीं हो पा रही है। आइए हम सुनवाते हैं, राजकुमार टाटिया जी का फोन आया था, वो सुनना चाहते हैं मेरा नाम जोकर से गीत जीना यहाँ मरना कहाँ यहाँ। आइए सुनवाते हैं ये गीत और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे।

0: दोस्तों, किसी कारण से हम आपसे फोन में बात नहीं कर पा रहे हैं। फोन लाइन कुछ इको हो रही है, लेकिन फिलहाल 8:56 हो चुके हैं। अब आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मराका को यही आज्ञा दीजिए। लीजिए, सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। एक बार फिर आपको दुर्गा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। फिर मिलूंगा किसी शाम, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शब्बा खैर।
1: चलते हैं।

भप भप। आओ सब लाइन में खड़े हो जाओ। मुन्ने तुम इंजन, डब्बू तुम कोयले का डिब्बा, चुन्नू मुन्नू लीला शीला मोहन सोहन जादो माधो सब पैसेंजर, सब पैसेंजर रेडी, एक

रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, रेल गाड़ी, छुक छुक छुक छुक छुक छुक छुक, बीच वाले स्टेशन बोले।

यार गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार टट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक रुक धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मैंगलोर मांडवा खांडवा खांडवा मांडवा रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव नेल्लूर वेल्लूर वेल्लूर नेल्लूर सोलापुर कोलापुर कोलापुर सोलापुर कुक्कल डिंडिगल डिंडिगल कुक्कल मछलीपट्टम दिमलीपट्टम दिमलीपट्टम मछलीपट्टम उंगोल नर्ति गोल नर्ति गोल उंगोल कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव कोरेगांव अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद सोतनूर कोतनूर सोतनूर कोतनूर चुक चुक चुक चुक चुक चुक बीच वाले स्टेशन बोले रुक रुक